0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुसाया। चिड़ियों को पता नहीं था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: उई माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?

0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शीला।
1: न्यू केरता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा इदु जनमनदा नादा।